रामोद्रिकूटे श्वस विप्रवासे स लक्ष्मणो व्यात भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात् अखिलात् प्रमाण।